0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: শুনছেন নমস্কার কলকাতা,
4: নমস্কার কলকাতা
3: 107 FM রেইনবোতে নমস্কার কলকাতা,
4: নমস্কার কলকাতা।
5: অনুশ্রীর জন্য, এমন মেয়ের জন্য কোন গান? আরবি আরবি শুভেচ্ছা জানাচ্ছে কোন গানের মধ্য দিয়ে? এগিয়ে যাও, কিছু করে দেখাও।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: जी हाँ दोस्तों, 107 एफएम रेनबो पर लेकर नॉनस्टॉप गपशप मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट पूजा। आप सभी सुनने वालों का स्वागत, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। हर सुबह 10:02 पर हाजिर हो जाते हैं हम लेकर आपके लिए ढेर सारी जानकारियों के साथ, सिलसिला गीत संगीत का। और ये जो गपशप है ये नॉनस्टॉप चलने वाली है पूरे 11 बजे तक। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुमार शानू की।

कुमार शानू और साथियों की आवाजें, दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। फिल्म दिल का क्या कसूर और इस गीत के साथ आप जुड़ चुके हैं दिल से दिल तक। तो चलिए करते हैं शुरुआत मौसम की जानकारी से। मौसम विभाग द्वारा प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान कोलकाता एवं आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। दोपहर अथवा शाम के समय गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और तेज हवाएं चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बात करें अगर गुजरे कल की, तो अधिकतम तापमान 34.4 यानी कि लगभग सामान्य रहा और न्यूनतम तापमान 28.2 यानी कि सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। उच्च आर्द्रता 93% और निम्न आर्द्रता 66% रही। मछुआरों के लिए विशेष चेतावनी जारी की गई है। 29 मई को पश्चिम बंगाल एवं उत्तर उड़ीसा के तट के आसपास समुद्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने और झोंकों की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना बताई गई है। इसलिए मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे आज के दिन पश्चिम बंगाल एवं उत्तर उड़ीसा के समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ने हेतु न जाएं। खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। नजर डालें अगर खबरों की ओर, तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि 21 जून को होने वाले इस बड़े आयोजन की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। इस थीम के जरिए लोगों को बढ़ती उम्र में भी शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग अपनाने के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो शहर कोलकाता, हो जाइए तैयार 21 जून के लिए। लेकिन याद रहे, योग सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि योग हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। हमारे दिनचर्या नहीं, जीवनचर्या में शामिल होना चाहिए। डालें अगर एक नजर हम परीक्षाओं की ओर, तो सरकार ने 21 जून को होने

वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और त्रुटि रहित ढंग से आयोजित करने के लिए प्रश्न पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वायुसेना की सहायता लेने की संभावना पर विचार किया है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने कहा है कि बकरीद के कारण 28 मई को स्थगित संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा अर्थात सीयूईटी की परीक्षाएं 31 मई 6 जून व 7 जून को आयोजित की जाएंगी। एजेंसी के अनुसार 31 मई को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 जून और 7 जून के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे।

अपनी यादों के उजाले हमारे साथ छोड़कर मशहूर उर्दू शायर डॉक्टर बशीर बद्र के जीवन की आखिरी शाम कल हो गई। पद्मश्री अवार्ड विजेता उर्दू शायर बशीर बद्र भोपाल में लंबी बीमारी के बाद कल अपने चाहने वालों को कह गए अलविदा। आधुनिक गजल के उस्ताद डॉक्टर बद्र 91 साल की उम्र में अंतिम सांस लिए। अयोध्या में 15 फरवरी 1935 को जन्म हुआ था डॉक्टर बशीर बद्र का, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उर्दू के शिक्षक रहे थे आप। डॉक्टर बशीर बद्र की शायरी, उनकी गजलें हमें जिंदगी को जीने के तौर तरीके सिखाती है। उनके कहे गए अल्फाज, कोई हाल भी ना पूछेगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, फासले से मिला करो, हमेशा मुझे याद दिलाते हैं कि रिश्तों में थोड़ी दूरी, या यूं कहें रिश्तों की मर्यादा बना के रहना चाहिए हमें। फिलहाल सुनते हैं कुमार शानू की आवाज में इस गीत को।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT

पॉम्प वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: जी हाँ दोस्तों, और लेकर नॉनस्टॉप गपशप मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट पूजा। फिलहाल 10:26:10 और वक्त हो चुका है जानने का हम सबको, आपको, मुझे और सभी श्रोताओं को कि क्या है विशेष आज के दिन।
0: आज के दिन
1: जी हाँ, रुक करते हैं आज के दिन का। आज का जो दिन है वो कई सारी बातों, घटनाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन इस फेरिस्त में जो मैं पहला जिक्र करूंगी, आज ही का दिन यानी कि 29 मई वर्ष 1953 को न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेनजिंग नोर्गे शेरपा द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर की गई थी पहली बार सफल चढ़ाई। उसी दिन की याद में आज के दिन को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में। साथ ही साथ आज के दिन हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के योगदान, साहस, समर्पण और बलिदान को सम्मान देना है। साथ ही उन शांति सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करना भी है जिन्होंने विश्व शांति स्थापित करने के प्रयास में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने पहला शांति मिशन वर्ष 1948 में मध्य पूर्व में शुरू किया था। तब से लेकर आज तक विश्व के अनेक संघर्ष ग्रस्त क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक शांति और स्थिरता स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं और इन सैनिकों का मुख्य उद्देश्य युद्ध विराम की निगरानी करना, नागरिकों की सुरक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना तथा संघर्षरत पक्षों के बीच विश्वास बहाल करना है। रुक करें अगर आज के दिन जन्मे व्यक्तियों की ओर, तो भारत के जाने माने कवि मदन कश्यप का जन्म

नागरिकों की सुरक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना तथा संघर्षरत पक्षों के बीच विश्वास बहाल करना है। रुक करें अगर आज के दिन जन्मे व्यक्तियों की ओर, तो भारत के जाने माने कवि मदन कश्यप का जन्म

नागरिकों की सुरक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना तथा संघर्षरत पक्षों के बीच विश्वास बहाल करना है। रुक करें अगर आज के दिन जन्मे व्यक्तियों की ओर, तो भारत के

जी हाँ दोस्तों, अगर पूछा जाए कि कहीं आपको प्यार तो नहीं हुआ है, तो शायद आप खुल के ना कह पाए, लेकिन कहना सीखिए, हाँ मुझे प्यार हो चुका है, मुझे स्वच्छता से प्यार हो चुका है। क्योंकि प्रेम जैसी स्वच्छ और निर्मल कोई दूसरी वस्तु हो ही नहीं सकती। अब आप कहेंगे कि मैं प्रेम को ऑब्जेक्टिफाई कर रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। प्रेम वो भाव है जिसे किसी भी रूप में

0: ढाला जा सकता है। और हमारा जो राज्य है पश्चिम बंगाल, राज्य का शहरी विकास तथा नगर पालिका मामलों का विभाग अब रास्ते पर गंदगी और प्लास्टिक कचरा फेंकने को लेकर बेहद सख्त कार्यवाही करने जा रहा है। पहले लोगों को 3 महीने का समय दिया जाएगा और उसके बाद भी अगर लोग अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे, शहर की स्वच्छता में अपना सहयोग नहीं देंगे, यहाँ वहाँ गंदगी फेंकते रहेंगे तो की जाएगी उन पर सख्त कार्यवाही। 1 सितंबर से प्लास्टिक या अन्य कचरा फैलाने पर बेहद सख्त कार्यवाही की तैयारियां शुरू की जा रही हैं। और अलग अलग शहरों में जुर्माना अलग अलग होगा। क्या होगी राशि, अब ये तो हमें भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप, मुझे विश्वास है कि आप ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन अगर फिर भी कहीं जरा सा थोड़ा सा भी आपके अंदर रह गई है ये आदत कचरा फैलाने वाली, तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए और कचरे को सही जगह तक पहुंचाइए। हो सके तो अपना जो भी आप बैग कैरी करते हैं उसमें एक छोटा सा सेक्शन बना लीजिए कचरे को रखने के लिए, और जहां भी आपको मिले डस्टबिन वहां पर उस कचरे को डाल दीजिए। आगे जिम्मेदारी उठा लेगी नगर निगम। तो चलिए, हमारे साथ एक हमारे कॉलर दोस्त जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी कहिए, कौन और कहां से?
1: जीतू बोल रहा हूँ, रिश्ता से।
0: स्वागत है आपका जीतू हमारे कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। तो बताएं, क्या कहना है आपका इस कचरे के निस्तारण के बारे में और शहर में फैली हुई गंदगी में एक आम आदमी की भूमिका के विषय में?
1: सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा दी कि आपका प्रोग्राम जो है बहुत ही अच्छा हो रहा है, और आप जो ये टॉपिक कर रही है साफ सफाई के ऊपर, मतलब जो रखी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि सफाई तो सभी को मतलब अच्छा लगता है, और सफाई करके रखना चाहिए अपने घरों में और बाहर में भी, कहीं भी हो साफ रहना जरूरी है कि हम लोग साफ रहेंगे तभी तो हम लोग जो है बीमारी से बच पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल जीतू। और देखिए, जो गंदगी है वो हमारे घर में भी होती है, जाहिर सी बात है, लेकिन अपने घर की सफाई की जिम्मेदारी अगर हमने उठाई है तो अपने शहर की सफाई की जिम्मेदारी हम क्यों ना उठाएं, है ना?
1: जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और हम लोग जैसे कि घर में रहते हैं तो अपना घर में जो जिम्मेदारी उठाते हैं कि घर को साफ करना है, और साथ में जो ऐसे कि बाहर में भी कचरा हो ही जाता है तो बाहर जो साफ करेंगे ही,
0: बाहर हम साफ करेंगे, बेहतर है कि हम बाहर कचरा फैलाएं ही ना। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगी इस विश्वास के साथ कि आप कभी भी सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकते हैं, क्या आपने कभी सड़क पर कचरा फेंकने वाले किसी व्यक्ति को टोका है?
1: देखिए दी, ऐसे तो मैं किसी को ऐसे देखा नहीं होगा, जब देखूंगा तो जरूर मैं बोलूंगा।
0: चलिए चलिए, बिल्कुल मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप बोलेंगे टोकेंगे। मैं अपने साथ हुई घटना बता दूं, मेरे सामने किसी ने कुछ खाकर एक कागज का ठोंगा फेंका, और मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको देखा और उसे उठाकर 10 कदम आगे रखे हुए डस्टबिन में डाल दिया। मुझे नहीं पता कि उनकी मनोदशा क्या थी, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि कुछ तो असर हुआ होगा। छोटे छोटे प्रयासों से ही हम बड़े परिवर्तन को ला सकते हैं, इसी विश्वास के साथ दे दूं आपको चुटकी भर नुस्खा। क्या कहते हैं, तैयार हैं आप?
2: एक चुटकी नुस्खे।
0: ये जो एक चुटकी नुस्खे होते हैं ये बड़े ही काम के होते हैं, और ये नुस्खे अभी हाल फिलहाल के नहीं, ये हमारी दादी नानी की दादी नानी के जमाने से चले आ रहे नुस्खे होते हैं। ये अलग बात है कि इंटरनेट के इस दौर में ये नुस्खे थोड़े आम हो चले हैं, लेकिन बारिश का मौसम है और बालों को भींग जाने के बाद यूं ही सुखा लेना सही नहीं है, क्योंकि बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए बारिश के पानी में जो केमिकल्स और कार्बन होते हैं वे हमारे बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बाल असमय झड़ने लगते हैं, रूखे हो सकते हैं। इससे बचने के लिए पहली कोशिश रहे कि बालों को भींगने से बचाएं, और अगर हम भींग ही गए हैं तो घर आकर किसी अच्छे माइल्ड शैम्पू से जो भी हम यूज़ करते हों अपने बालों को अवश्य धो लें। संभव है तो थोड़ी सी मेथी रात भर भिंगा लें, सुबह उसे पीस कर पेस्ट बनाएं और उसमें

0: दही मिलाकर अपने बालों पर और बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाकर 30 मिनट लगा रहने दें और फिर जो भी आप शैम्पू यूज करते हैं उससे अपने बालों को धो लें। ये भी आपके बालों को बारिश के मौसम में स्वस्थ रखने में मददगार साबित होगा। आजमाया नुस्खा है, आप भी आजमा कर देखें।
1: एक चुटकी नुस्खे।
0: इतनी सारी बातों के बीच ऐसा बिल्कुल नहीं कि गानों का सिलसिला थमने वाला है, बिल्कुल नहीं थमेगा सिलसिला, गीतों का चलता रहेगा, जारी रहेगा पूरे 11 बजे तक। फिलहाल 10:43 और अगला जो गीत है वो बिल्कुल आप सबके लिए तैयार है और ये गीत तभी होठों पर मुस्कुराएगा, गुनगुनाएगा जब आप होंगे हमारे मीत कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में।

जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार के नए फैसले के तहत आगामी 1 जून से राज्य की सभी सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है और कंडक्टरों को ये निर्देश दे दिया गया है कि जीरो वैल्यू टिकट जारी किए जाएं। बसों में बढ़ेगी महिलाओं की संख्या, सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी हो जाएगी, यानी कि अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार मुस्तैद हो चुकी है तो महिलाएं थोड़ी सी निश्चिंत हो सकती हैं। लेकिन अपना ख्याल स्वयं रखें, इस मूल मंत्र को हमेशा दोहराते रहना चाहिए। हमारे कोई एक कॉलर फ्रेंड है जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। कौन है हमारे साथ? हेलो, आप ऑन एयर हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं। लगता है उन्होंने निर्देशों को सही तरीके से नहीं सुना। कोई बात नहीं, हम सुनते हैं अनुराधा पौड़वाल और सुरेश वाडकर की आवाजों में इस गीत को।

और अब्बा घड़ी की सुइयां कह रही हैं 10:56 हो चुका है, यानी कि हमारा ये जो कार्यक्रम है नॉनस्टॉप गपशप, ये आखिरी गीत आप सभी तक पहुंचाने के लिए आज के इस कार्यक्रम का बेचैन है, बेताब है, आतुर है। तो चलिए आखिरी गीत कुमार शानू की आवाज में आप सभी के नाम करते हुए, आज्ञा लेती है आपकी आज की दोस्त, आपकी होस्ट पूजा। आप सभी सुनने वालों से जुड़े रहिए, दिल से दिल तक होगी आपसे मुलाकात फिर किसी सुबह किसी शाम। तब तक के लिए नमस्कार।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कालो जोई बांग्ला गानेर धारा छुए जाक मन, सुनछेन गान दोरिया 107 FM रेनबो ते। गान दोरिया, गान दोरिया, छुए जाक मन, छुए जाक मन।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने

0: एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

छुपाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ट्यून कीजिए बस आकाशवाणी कोलकाता का FM रेनबो 107, दिल से दिल तक बातें होंगी। मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: आकाशवाणी कोलकाता का ये FM Rainbow चैनल है 107 बातें दिल से दिल तक की और यहाँ पे मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल। और रही बात परियोजना प्रस्तुति की तो वो सारे सरकारें अपनी जनता के लिए आम जनता के लिए वो सारी सहूलियतें देती हैं जो उनको ज़रूरत होती है, बेसिक नीड्स जो होती हैं। कहीं पे भी मुश्किलें आए और जिस भी तबका यानी कि जिस भी वर्ग के लोगों को मदद की ज़रूरत है समाज की, उसको मदद करती है, संबल देती है, सहारा देती है, सहायता करती है। और ये सरकार की मतलब कहने की इस सरकार जो पूरा एक सर्वे करती है आम जनता के बीच और आम जनता को कब किस बात की सहायता की ज़रूरत है वो सब एनालाइज करके उसके बाद से योजना बनाती है ताकि उस पूरे वर्ग के सभी लोगों को उसकी मदद मिल सके और फायदा हो सके और समाज डेवलप करे यानी कि विकास करे। और इसमें एक योजना जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना है। और रोजगार इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो घर में चूल्हे को जलाती है, परिवार को खूबसूरत बनाती है। अगर पेट भरा हुआ होता है तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, वरना सारी खुशियां मध्यम सी हो जाती हैं। तो सरकार इस रोजगार के सृजन और श्रमिकों के उत्थान के लिए नई रोजगार प्रोत्साहन योजना लेकर आई है और इसका मुख्य उद्देश्य है नियोक्ताओं और पहली बार नौकरी पर रखे गए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना ताकि देश में रोजगार वृद्धि को बढ़ावा मिल सके। और ये उसमें जो सबसे बड़ी योजना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना। तो उसके बारे में हम शुरुआत ये कर देते हैं कि भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसके तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लाने के लिए सब्सिडी दी जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके उनके बिजली बिल को कम करना, यानी कि बिजली बिल में जो कमी आई, कटौती आई, ताकि आर्थिक स्थिति और बेहतर हो, तो उसके लिए मुफ्त बिजली एक तरह से 3 किलोवाट तक सोलर सिस्टम औसतन हर महीने 300 यूनिट से ज़्यादा बिजली पैदा कर सकता है और उसमें सब्सिडी राशि भी है। तो आगे हम बातें करेंगे, तो सबसे पहले हम एक सॉन्ग सुन लेते हैं आप सभी के लिए, तो उसे सुनिए और फिर मिलते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है उसके बारे में और अधिक जानकारी हम आपको देते हैं।

आकाशवाणी एफ एम रेनबो 107 म्यूजिकली योर्स, और म्यूजिक ही म्यूजिक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि म्यूजिक पसंद भी आ रहे होंगे। वैसे बातें योजना की चल रही थी, वो भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात चल रही थी, और मुफ्त बिजली भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसके तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए

सब्सिडी दी जाती है। अब कितनी सब्सिडी, कितने किलो वाट में दी जा रही है वो भी हम आपको बता देते हैं। प्रोसेस क्या है, कैसे ये आपकी छत पर लग जाएगी ये भी आपको हम बताएंगे। और अगर कोई कष्ट हो, कोई दिक्कत हो तो आपको कहाँ संपर्क करना है ये भी हम बताएंगे। अधिक जानकारी और सहायता के लिए आप अपने नज़दीकी बिजली कार्यालय या डिस्कॉम केंद्र पर जा सकते हैं। लेकिन क्या है ये बिजली की ये योजना क्या है वो हम आपको बता देते हैं। मुख्य लाभ और सब्सिडी जो है वो हम बता देते हैं आपको। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का ये एक योगदान समझ लें इसे। और मुफ्त बिजली 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम औसतन हर महीने 300 यूनिट से ज़्यादा बिजली पैदा कर सकता है। सब्सिडी राशि जो है वो हम बता देते हैं, अलग अलग किलोवाट पे अलग अलग सब्सिडी है। अगर 1 किलोवाट तक प्लांट आपने अपनी छत पे लगाए हुए हैं तो आपको 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, और 2 किलोवाट तक के प्लांट पे 60,000 रुपये, और 3 किलोवाट या उससे अधिक के प्लांट पे अधिकतम 78,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। और ये लोन का भी मामला है कि योजना के तहत आसान लोन सुविधा भी उपलब्ध है। उपभोक्ता लगभग 7% ब्याज दर पर करीब 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं, तो ये भी एक सहायता है। किसी भी तरह आप अपनी बिजली बचा सकते हैं, सरकार आपके लिए तत्पर है ताकि आप जो बिजली के बिल से परेशान हैं वो कम हो जाए। और बिजली आवश्यक चीज़ है आज के ज़माने में, जो डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रही है, हर चीज़ बिजली पर चलने वाली है। तो अब पात्रता कौन ले सकता है ये भी हम बता देते हैं। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए सबसे पहले, परिवार के नाम पर बिजली का वैध कनेक्शन होना चाहिए, घर की छत पर सोलर पैनल के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए, 1 किलोवाट सोलर पैनल के लिए लगभग 100 वर्ग फुट जगह चाहिए, यानी कि 10x10 की जगह आपको चाहिए, और आवेदन के पहले किसी अन्य रूफ टॉप सोलर योजना का लाभ ना लिया हो। अगर पहले से आपके छतों पे है तो आप नहीं ले सकते हैं। और आवेदन प्रक्रिया क्या है ये हम आपको बता देते हैं। योजना के लिए पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। पीएम सूर्य घर आधिकारिक पोर्टल पर जाएं, आप वहां जाना होगा, अप्लाई फॉर रूफ टॉप सोलर, उस पर क्लिक करें और अपने राज्य और बिजली वितरण कंपनी उसका डिस्कॉम जो है उसका चयन करें, अपना जो उपभोक्ता खाता संख्या है वो आप उसमें डालें और मोबाइल नंबर दर्ज करें, लॉगिन करके फॉर्म भरें और सोलर पैनल लगवाने के लिए आवेदन करें। और अधिक जानकारी के लिए जो भी आपको लगे कि ये काम आप तक नहीं हो पा रही है तो फिर अपने नज़दीकी बिजली कार्यालय या डिस्कॉम केंद्र आपको जाना होगा। और फिलहाल आपको जुड़े रहना होगा आकाशवाणी कोलकाता के FM रेनबो चैनल से, 107 बातें दिल से दिल तक। अब दिल की बातें तभी होती हैं जब पेट भरा हुआ होता है कि नहीं? तो भाई सोलर पैनल लगेगा तो बिजली बचेगी, और बिजली बचेगी तो जेब में पैसे बचेंगे, पैसे बचेंगे तो खाना खाएंगे, है कि नहीं? चलो आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी कोलकाता के FM रेनबो चैनल से। मैं हूँ आपके साथ RJ आदिल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी कोलकाता एफ एम रेनबो 107 म्यूजिकली योर्स, बातें दिल से दिल तक की। और एक शेर है आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और कल शाम की बात है, जैसे मैं रेडियो से निकल रहा था तो कान में कहीं से ये आवाज आई कि बशीर बद्र अब नहीं रहे। मैंने कहा ऐसा हो गया। देखो उम्र कहते ना, एज डजंट मैटर, मरने का कोई उम्र नहीं होता। जिंदा तो इंसान कई बार रहता है लेकिन जिंदा होता नहीं है। लेकिन जो ना रह के भी जिंदा हो वो मरते कहां है। तो एक और शेर है कि मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। और एक शेर और है कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये सारे शेर बशीर बद्र की सबसे खूबसूरत अदा ये कि वो कॉमन पीपल के लिए लिखते थे। ऐसे शब्द इस्तेमाल करते थे उर्दू के जो बड़ी आम भाषा हो, यानी कि हम सब समझ सकते हो, कोई भी समझ सकता हो, इसलिए ये पॉपुलर हुए। लिखे बहुत खूबसूरत लिखे कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। अब हमारे बीच नहीं रहे, बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। 1935 में अयोध्या शहर में उनका जन्म हुआ था और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की, और फिर उन्होंने मेरठ कॉलेज से उर्दू विभाग में बतौर लेक्चरर 1990 तक अपनी सेवाएं दी। उन्हें 1999 में, यानी कि 1999 में पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भाषा को इतना पॉपुलर कर गए हैं, इतना पॉपुलर कर गए हैं कि इन्हें कोई भूल ही नहीं सकता। 91 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ, भोपाल में निधन हुआ इनका। और साहित्य क्षेत्र में योगदान के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित तो किया गया, हमने बताया ही आपको। डिमेंशिया से जूझ रहे थे ये। गीतकार जावेद अख्तर ने शोक जताते हुए एक्स पे कहा है कि आज हमारी उर्दू जुबान थोड़ी और गरीब हो गई, उनकी शायरी यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। सच में बहुत ही खूबसूरत लिखा करते थे। एक बड़ा ही खूबसूरत उनका शेर यह भी है कि दुश्मनी जम के करो लेकिन इतनी गुंजाइश रहे, फिर कभी दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। उनकी गजल है जो हम प्ले करने जा रहे हैं, आप उसे एंजॉय कीजिए। आकाशवाणी कोलकाता के FM रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं मुझे, यानी कि आरजे आदिल को।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आकाशवाणी एफएम रेनबो म्यूजिकली योर्स, मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का एफएम रेनबो चैनल 107 दिल से दिल तक, और कार्यक्रम चल रहा है 3 का तड़का। और अब तड़का में हम एक स्टोरी डालने जा रहे हैं, उसमें सलमान खान की बात होगी। सलमान खान ने वरुण धवन के कहा कि एक बार फिर से हमारी, क्या लिखा उन्होंने, इसने मेरा एक और गाना उठा लिया। दरअसल हुआ क्या है कि बीवी नंबर वन का जो चुनरी चुनरी सॉन्ग है सलमान खान का, जो कि सुष्मिता सेन के साथ फिल्माया गया है, तो उसे रिक्रिएट किया जा रहा है वरुण धवन के आगामी फिल्म में। और फिल्म का नाम है जवानी तो इश्क होना है। उसी गाने का एक लाइन उठा के फिल्म बना दी है और गाना चुनरी चुनरी। इससे पहले भी वरुण धवन ने धावा बोला है, जुड़वा टू जो मूवी आई थी उसमें उन्होंने चलती है क्या 9 से 11 और भी कई गाने उनके उठाए हैं और रिक्रिएट किए। और रीमेक्स, रिक्रिएट, री ये सब दौर चलता रहा, हमेशा चलता रहा, क्योंकि पुराने गाने इतने पॉपुलर रहे हैं, इतने पसंद किए गए हैं कि उसको नए फ्लेवर में, यानी कि प्रोडक्ट वही और पैकेजिंग थोड़ी सी नई करके पेश की जा रही है। तो वरुण धवन का ये जो रूप है वो ज़रूर सुनने लायक है। तो आइए उस गाने को सुनते हैं जो ओरिजिनल सलमान खान वाला है, चुनरी चुनरी, वो सुनते हैं। उसके बाद से फिर जुड़वा का भी इस गाना सुनेंगे, तो कहीं मत जाएगा, जुड़े रहिएगा आकाशवाणी कोलकाता के FM रेनबो चैनल से 107 बातें दिल से दिल तक की होगी।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी कोलकाता का एफएम रेनबो सुन रहे हैं 107 दिल से दिल तक बातें। और इस वक्त हम आपको थोड़ा सा एक अलर्ट जारी है जो मौसम विभाग की तरफ से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि सीवियर थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग यानी बिजली की कड़क होगी और इंटेंस रेन और फिर हवा भी बहुत तगड़ी है। कल से रफ्तार दुगनी हो गई, कल 30 से 40 किलोमीटर थी, आज 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार रहेगी हवा की। और कहाँ कहाँ इफेक्टेड है वो बता देते हैं, जहाँ पर प्रभाव पड़ेगा इसका वो है कई कोलकाता के कई हिस्से में ऐसा होगा, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, और ये 2-3 घंटे आपके लिए बहुत ही थोड़ा सतर्क रहने की है। तो आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हो, घर में हो तो आराम से घर में रहें, बहुत जब तक ज़रूरी ना हो इनफैक्ट बाहर निकले ना, जहाँ तक मौसम विभाग का कहना है। और बात आगे बढ़ाते हैं क्योंकि 3 का तड़का लग रहा है एफएम रेनबो पे। चलते चलते एक सॉन्ग भी बताएंगे। अब वैसे वरुण धवन की बात हुई तो डेविड धवन की भी बात कर लेते हैं। उनका कहना है कि अगर किसी निर्देशक की फिल्म नहीं चलती है तो एक्टर कहीं और चले जाते हैं, किसी के प्रति वफादार नहीं होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल नाम है जो वो बताते हैं। और उनका कहना है, उन्होंने कहा कि लेकिन एक एक्टर ऐसे हैं जिनके साथ मैंने काम किया है और उन्हें कभी इस बात की परवाह नहीं कि उनकी फिल्म चली या नहीं, वो हैं गोविंदा। और गोविंदा ने, पता है, डेविड धवन के साथ 18 हिट फिल्में दी हैं। तो भाई इतना प्यार क्यों ना आए। तो चलो उन्हीं के गाने के साथ हम आज के कार्यक्रम का अंत करते हैं और अब मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में एफएम गोल्ड 100.1 खरा सोना पर।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा

0: सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तुम्ही सुनछो वीकेंड कैफे 107 FM रेनबो ते। वीकेंड कैफे, वीकेंड कैफे।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: FM Rainbow-তে তিনে কে তিন, তিনে কে তিন, গানের হ্যাট্রিক, গানের হ্যাট্রিক।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

आकाशवाणी कोलकाता का एफएम रेनबो सुन रहे 100.1। मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल। कार्यक्रम चला छाया लोक और बन रही हमारे साथ। गाने को एंजॉय कीजिए।

भाई ये सॉन्ग है ना, मतलब इतना प्यारा सॉन्ग कि मतलब मेरे तो गूज बम्स आ गए और रोंगटे खड़े हो गए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का FM रेनबो 100.1 यानी 107। दिल से दिल तक की बातें होंगी और मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल। तो हो सकता है कि आपके दिल से मेरे दिल तक की बातें होंगी। इस वक्त है ना, मैं मूड में हूं सिर्फ बहुत बेहतरीन बेहतरीन गाने सुनाने के। तो क्योंकि म्यूजिक मैटर्स, आपको मैंने भी बताया, पता नहीं आपने गोल्ड में हमारे साथ आप जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे, लेकिन हमने बताया था ये कि म्यूजिक थेरेपी भी एक चीज होती है। गाने सुनने से हमारा मेंटल हेल्थ ना बेटर होता है। तो आप हमारे साथ सुनिए, हम बैक टू बैक सॉन्ग सुनाने जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग्स होंगे। ये अलग बात है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होंगे, लेकिन इस वक्त जो सॉन्ग प्ले होना ना, वो मेरे दिल से निकले हुए सारे सॉन्ग्स हैं। तो इसे इंजॉय कीजिए, कहीं और नहीं, आकाशवाणी कोलकाता के FM रेनबो 107 यानी कि 107 पे, जो बातें दिल से दिल तक होती हैं। और एक एक बहुत अच्छा सॉन्ग है जो बहुत अच्छे सिंगर की आवाज में है, जिसका नाम पैपन है।

0: आकाशवाणी कोलकाता का एफएम रेनबो चैनल है, मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल 107 पे, बातें दिल से दिल तक होंगी और कार्यक्रम चल रहा है छाया लोक। और छाया लोक में आज यानी कि शुक्रवार को सेलुलॉइड सुपर हिट्स यानी कि जितने भी सुपर हिट्स मूवीज हैं जो हमने चुनी हैं आपके लिए, उसके पर्दे के पीछे की बातें होंगी, बिहाइंड द सीन क्या हो सकता है वो बातें होंगी। और एक फिल्म थी लगान, लगान देखी है आपने, बड़ी यूनिक सी फिल्म थी कि आज़ादी के लिए क्रिकेट के गेम खेलने पड़े हैं, वजह चाहे जो भी हो, उस वक्त क्रिकेट की गेम हुई हो या ना हुई हो, लेकिन ये बताने के लिए कि आज क्रिकेट की भाषा सभी को समझ आती है। वैसे 7:30 से आपको आईपीएल का वो सेकंड जो क्वालिफायर मैच है वो होने वाला है, यानी कि अब इसमें जो जीतेगा वो पहुंचेगा फाइनल में, वहां इंतजार कर रही है आरसीबी उनका। तो ये क्रिकेट की भाषा समझ आएगी लोगों को, इसलिए ये फिल्म वैसे बनी थी कि अगर क्रिकेट मैच जीते तो भारत आजाद, यानी कि लगान माफ, और अगर क्रिकेट हार गए तो लगान आपको दुगनी देनी पड़ेगी, ये वाला मामला था। तो उसमें था कि अंग्रेज बॉलिंग करते हैं और आमिर खान बैटिंग कर रहे होते, और सिचुएशन ये बनी थी कि उनके सर पे लगना है और उनको गिर जाना है। तो हुआ क्या था कि बार बार रबर के स्पॉन्ज के गेंदे होते हैं ना, तो उससे ना उनके सर पे मारा जा रहा था और कई टेक हुए। ऑब्वियस है, हल्की चीज से भी सर पे चोट लगती है। एक बार ऐसे गेंद फेंकी गई कि उनको वो है ना वहीं पे चक्कर खा के गिर जाते हैं। पूरी यूनिट जितने भी वहां पे क्रू मेंबर्स थे सब हैरान कि ये क्या हो गया, आमिर को चोट लग गई। और आमिर ने इतनी नेचुरल एक्टिंग वहां पे उस गेंद पे निकाली थी, उस टेक में निकाली थी, फिर उठकर वो मुस्कुराने लगे। तो ऐसी फिल्में बनती हैं। वैसे लगान से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं जो आपको बताने के लायक है, लेकिन फिलहाल आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ और हम गाने कुछ अलग सुना रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन गाने हैं, उसे एंजॉय कीजिए, कहीं और नहीं, आकाशवाणी कोलकाता के एफएम रेनबो पे 107 बातें दिल से दिल तक होगी। और समय हो गया 7:20।
1: क्यों जुड़ा हूं मैं गुरु जी इस अस्त्रों की दुनिया से?

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी कोलकाता का FM रेनबो चैनल है 107। दिल से दिल तक बातें होंगी और आपके साथ मैं हूं RJ आदिल, ADIL। अब देख लो भाई, गाने प्यारे प्यारे हों तो बातें करना भी अच्छा लगता है और आपको सुनना भी अच्छा लग रहा होगा। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आकाशवाणी अपने 90 साल पूरा कर लिया है आपके साथ की वजह से। हो सकता है आप उस दौर में ना हो, लेकिन आपके पूर्वज उस दौर में होंगे। अगर कोई बुजुर्ग आपके साथ हूं अभी भी, तो आप ब्लेस्ड तो हैं ही, उनसे कभी बातें कीजिएगा और आकाशवाणी की कहानी उनसे जरूर सुनिएगा। और फिलहाल जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो आने वाली जनरेशन को आप आकाशवाणी की कहानी जरूर सुनाइएगा, क्योंकि ये सिलसिला यूं ही चलता रह जाएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और एक दौर है जब शाहरुख खान का दौर था, आज भी है, दौर बहुत लंबा चला है तीनों ही खान्स के। तो एक फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसकी शूटिंग चल रही थी और आदित्य चोपड़ा यानी कि यश चोपड़ा की बेटी जी, उनकी ये पहली डायरेक्टर डेब्यू फिल्म ये कह सकते हैं वो थी। और दोनों यानी कि यश चोपड़ा और आदित्य अभी सेट पे नहीं पहुंचे थे, ना जाने शाहरुख खान को क्या समझ आया, उन्होंने फटाफट एक सीक्वेंस तैयार की फाइट सीन की, जबकि इस फिल्म में कहीं दूर दूर तक फाइट सीन है ही नहीं, लेकिन शाहरुख को लगा कि जरूरत है फाइट सीन की, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और पूरे क्रू मेंबर जो भी टेक्नीशियन वगैरह थे सबको तैयार करके फटाफट एक शूट किया। और उसमें जो उस फिल्म के एक छोटे से विलन हैं उनके साथ परमजीत के साथ एक फाइट सीन सीक्वेंस शूट कर लिया, तब तक उसके बाद आए। उनको लग रहा था कि यश चोपड़ा बहुत नाराज होंगे कि जब जरूरत नहीं थी तो फिर इस सीन को करने की क्या मतलब जरूरत आन पड़ी। फिर बाद में जब यश चोपड़ा ने देखा तो उन्हें लगा कि चलो रख देते हैं, फिर वो सीन काटा नहीं गया, फिल्म में है और कभी आप देखिएगा। आपने देखी होगी वैसे DDLJ, नहीं तो मुंबई में अभी भी एक थिएटर है, एग्जैक्टली नाम मिस कर रहा हूँ, अभी भी वो पिछले जब से फिल्म रिलीज हुई है यानी कि 1995 से अभी तक मूवी उसमें चल रही है, समतरबार कर गए हैं। तो लेकिन फिलहाल गाने को एंजॉय कीजिए हमारे साथ, कहीं और नहीं, आकाशवाणी कोलकाता के FM रेनबो 107 पर।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी कोलकाता के एफएम रेनबो चैनल सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल। कार्यक्रम चल रहा है छाया गीत, और इसमें छाया लोक सॉरी, और इसमें बात चल रही है उन हिट फिल्मों की जो कहीं ना कहीं हमें और आपको मतलब मिसमराइज किया हुआ है। तो वो सारी फिल्में हम डिस्कस करेंगे, और उसमें डिस्कस करेंगे अभी फिलहाल जब बात शाहरुख खान और यश चोपड़ा की बात चल रही थी, जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाए में उन्होंने फाइटिंग सीन ऐड ऑन किया और फिर उसे यश जी ने कबूल भी कर लिया। तो मुझे ना एक ही बार में वो रिलेशन मुझे याद है, वो रिलेशनशिप जो एक बेटे की तरह किशोर कुमार को श्री बर्मन साहब ने एक मतलब एक उसको उनको दिल में जगह दी थी। किशोर कुमार इतने लाडले थे जितने कि पंचम दा भी नहीं, अक्सर होता है क्योंकि किशोर दा

वो हर इम्प्रोवाइजेशन, वो कोशिश, वो ट्राई कर पाते थे जो एस आर डी बर्मन साहब नहीं कर पाते थे. उनको लगता था कि पिताजी बाबूजी गुस्सा ना हो जाए, लेकिन ये अपने प्यार में इतना उनको मतलब इम्प्रेस किया हुआ था कि वो किसी चीज़ के लिए जल्दी ना नहीं कह देते और इम्प्रोवाइज़ करने का मौका भी देते. उनको पता था कि बच्चा टैलेंटेड है, कुछ ना कुछ बेहतर करेगा. वही शाहरुख खान में यश चोपड़ा की चीज़ें वो दिखती हैं मुझे, जब ये बात मुझे पता चली है. तो अब अगर ऐसी बात है तो फिल्म वो सॉन्ग ज़रूर हम सुनते हैं आराधना फिल्म का, जो कि पहली मूवी मान के चलिए आर डी बर्मन ने शुरुआत की थी, अपने पापा के अधूरे काम को पूरा किया था. और फिल्म आराधना थी, किशोर कुमार साहब का मतलब उसमें बहुत बड़ा योगदान था और आर डी बर्मन की बहुत बेहतर होने में किशोर कुमार का भी कंट्रीब्यूशन तो था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता. तो फिलहाल आप जुड़ रही हैं हमारे साथ आकाशवाणी कोलकाता के एफएम रेनबो यानी कि 107, यानी कि बातें होंगी यहाँ पे दिल से दिल तक की.

Akashwadi at 90. आकाशवाणी कोलकाता का एफएम रेनबो चैनल है, म्यूजिकली आपका है जी। और 90 साल पूरा कर चुके हैं आकाशवाणी, तो भाई आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये इतना लंबा सफर हुआ है। और आकाशवाणी के साथ पता है क्या एक चीज बहुत ही खूबसूरत है, कि जितनी लंबी उम्र उतना ही ये जवान होता चला जाता है। तो आइए आप भी जुड़िए हमारे साथ, जो नई जनरेशन के लोग हैं वो भी जुड़े, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो आपको ज़रूरत होती है। करियर हो, हेल्थ हो, रोजगार हो, सब कुछ है यहाँ पे। और म्यूजिक तो आइए, म्यूजिकली योर्स इसी नहीं कहा जाता है। तो आइए जुड़िए आकाशवाणी कोलकाता के एफएम रेनबो चैनल से। 107 बातें दिल से दिल तक की होती है, मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल, तो बातें दिल से आदिल तक भी होगी। तो आइए जुड़िए हमारे साथ। और छाया लोक कार्यक्रम चल रहा है जो कि 7 से 9 बजे तक चलेगा, और इस कड़ी में यानी कि आज है फ्राइडे, तो आज उन सारे सुपर हिट्स फिल्म को लेकर चल रहे हैं हम, जो कि हमें और आपको याद भी हैं और हमारे और आपके दौर के भी हैं। अब इस सीरीज में बारी चल रही है शाहरुख खान के बाद से, बारी आ गई है आमिर खान की, आमिर खान की थ्री इडियट्स की। थ्री

इडियट्स अगर आपने देखी होगी, बड़े यूनिक फिल्म थी और इसमें जो मैसेज था पता नहीं आप लोगों ने उसको ग्रैब किया है कि नहीं किया है। पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। बात प्रेम की नहीं है, बात है पढ़ाई को प्रेम से पढ़ने की है, यानी कि पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है और रट्टे मार तो होना ही नहीं है। आपको समझना होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, चाहे 10th 12th या किसी भी कॉम्पिटिशन के, वो रट्टू मतलब होते ही नहीं है। हाँ, रट्टे कहाँ पे हैं, जहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करने हों, जो मेडिकल इंजीनियरिंग सभी में और हर जगह, तो ताकि आपको आसानी से बड़ी बड़ी चीज़ें याद हो जाए। तो जितने भी वनडे मैच खेलने वाले लोग हैं, यानी कि एक दिन के जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनके पास ये काफ़ी फार्मूलाज होते हैं, कई बार एब्रप्ट भी होते हैं, लेकिन चलो भाई एग्ज़ाम में देना है तो बहुत बढ़िया है। आप पढ़ाई के लिए यूज़ करते हो, किसी को वो सब यूज़ ना करना अपनी सोसाइटी में। फिलहाल बात जब थ्री इडियट की चल गई है, तो वहाँ पर खुंदस के आए हुए हैं वायरस से, यानी कि अपने जो हेड है उनकी यूनिवर्सिटी के डीन से। तो अब करना क्या, अपना गुस्सा उतारना है। तो गुस्सा तो ऐसे उतरने से रहा, कई बार चीज़ें नहीं आती हैं। तो उसमें सीन में ये क्रिएट किया गया है कि तीनों ने, यानी कि आमिर खान ने, आर माधवन ने और फिर शर्मन जोशी ने, इन तीनों ने शराब पी हुई है। तो अब देखो इसमें आमिर खान हैं और ये तीनों एक्टर ही बहुत ही तगड़े वाले हैं, तभी जाके ये ट्रियो बना था। तो इसमें क्या था कि एक्टिंग तो आती है इनको, लेकिन नशे में करना था। तो राजू हिरानी, जो एक तरफ आमिर खान जिनको हीरो में परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, वैसे राजू यानी राजकुमार हिरानी ये डायरेक्टर में भी परफेक्शनिस्ट हैं। इनको वही चाहिए होता है जो चाहिए। तो इसमें आप इनकी जितनी भी फिल्में देखना, उसकी जो BTS है यानी कि बिहाइंड द सीन अगर आप जानना चाहेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कितने परफेक्शनिस्ट हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, सही में शराब पिलाते हैं, उनको पता नहीं था लेकिन शराब पिए। अब उस नशे में क्या होता है कि ये लोग पॉजेस बहुत देते हैं, डायलॉग्स भूल जाते हैं, कब बोलना ये भूल जाते हैं। अब इसको रीटेक इतना हुआ, हर बार उनको पिलाया गया, हर बार स्टॉक तक ख़त्म हो गया। और इसमें कई चीज़ें हुई और पॉजेज आए और डायलॉग्स वो बोलना भूल जाते थे, लेकिन फिर भी जब फाइनल टेक हुआ तो जाके पता लगा कि ये राजकुमार हिरानी क्या चीज़ हैं। एकदम जो उनको चाहिए था वो निकाल लिया इन्होंने। फिलहाल बात आगे बढ़े इससे पहले हम एक सॉन्ग सुनते हैं, बैक टू बैक दो सॉन्ग आमिर खान की फिल्म के, एंजॉय कीजिएगा कहीं और नहीं। आकाशवाणी कोलकाता की FM रेनबो 107 पे बातें दिल से दिल तक की होंगी, गाना एंजॉय कीजिए, बहुत ही बेहतरीन है। और इस गाने में जो सिंगर हैं, गुरु और शिष्य हैं, कभी आपने सुना होगा श्रेय घोषाल को ऑडिशन में सोनू निगम ने ऑडिशन लिया था और आज दोनों साथ ही ये गा रहे हैं इस गाने में।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 107 बातें दिल से दिल तक म्यूजिकली योर्स, यानी कि म्यूजिकली आपका है भाई। तो म्यूजिक अच्छा होना बहुत जरूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो ये गाने सुन रहे होंगे इंजॉय तो बहुत कर रहे होंगे। देखो हर दौर के गाने हमने प्ले किए। आमिर खान के अगर हमने 3 इडियट्स प्ले किए हैं तो फिर कयामत से कयामत तक भी प्ले किया है। वैसे कोशिश करूंगा कि अगर आमिर के अगर सलमान के प्ले करें तो मैंने प्यार किया भी प्ले करूं, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ जरूर। एंजॉय कीजिएगा गाने को, म्यूजिक को, बातों को, क्योंकि चल रहे हैं छाया लोक कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल। और इस वक्त हम उन फिल्मों की बात कर रहे हैं जो सुपर डुपर हिट्स हुई हैं और उनके बिहाइंड द सीन क्या क्या पीछे पीछे हो रही होंगी फिल्म मेकिंग के दौरान, वो हम बता रहे हैं आपको। अब अगर सलमान खान की बात करें भाई, 2 खान हो गए थे, एक को कैसे मिस कर सकते हैं। तो सलमान खान की अगर बात करें तो सुल्तान मूवी, सुल्तान उस वक्त रिलीज हुई थी जब दंगल भी रिलीज हुई थी, यानी कि एक होता ना एक सीजन चला आता है कि अब इस तरह की फिल्में बन रही ट्रेंडिंग, समझे। वैसे इसके जो सुल्तान के जो डायरेक्टर राइटर जो थे अली अब्बास जफर, उनका जॉनर ही स्पोर्ट्स था, तो स्पोर्ट्स में उन्होंने सोचा कि क्यों ना स्पोर्ट्स से जुड़ी फिल्म बनाए, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी भी बनाए। तो उन्होंने रेसलिंग चुनी और रेसलिंग में चुनी सुल्तान को। अब सुल्तान में किसको लिया जाए, कहानी जब

कंसीव हुई 10 पेजेस की कहानी हो गई। और आदित्य चोपड़ा से जब जफर मिले तो कहानी पढ़ते ही दोनों के जहन में एट ए टाइम एक ही एक्टर का नाम आया, वो सलमान खान। इन लोगों ने ठान लिया था कि अगर सलमान खान इस फिल्म के लिए ना कह देते हैं तो ये फिल्म हम बनाएंगे नहीं। अगर सलमान खान ने अगर ना कह दिया इस फिल्म के लिए तो फिल्म बनेगी ही नहीं। और सलमान खान ने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो वो पहली फुर्सत में तैयार हो गए, क्योंकि उनको भी लगा था, अलग बात है कि उम्र के 48वें पड़ाव पे ऐसी एक्टिंग करनी थी, एक्टिंग तो छोड़ दो, इसमें ट्रेनिंग बड़ा टफ था, क्योंकि मोटे से फिर दुबले होना था, ये सारी ट्रेनिंग है, और रेसलर की ट्रेनिंग, हाथ पांव चलाना, वो सारे दांव पीच सीखना इस उम्र में आसान नहीं होता है। लेकिन कहते हैं ना, एज जस्ट अ नंबर, इन्होंने प्रूव किया और फिर फिल्में की, और फिल्मों ने क्या किया, जग घुमा दिया पूरा। तो आप कहीं में जाइएगा, जुड़ रहेगा हमारे साथ आकाशवाणी कोलकाता की FM रेनबो के साथ 107 बातें दिल से दिल तक होगी। और भाई आकाशवाणी ने 90 साल पूरे कर लिए हैं अपने उम्र के इस पड़ाव पे, और भी ज्यादा जवान हो गया है जग घूमिया फ्रॉम द फिल्म सुल्तान।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 107 बातें दिल से दिल तक म्यूजिकली योर्स। मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल और कार्यक्रम चल रहा है छाया लोग। शुक्रवार का दिन है और आज हम बातें कर रहे हैं जो सुपर हिट फिल्म है ना उनकी पर्दे के पीछे की बातें यानी बिहाइंड द सीन। और एक बॉलीवुड को ना एक बहुत ही फाइन ट्यून एक्ट्रेस मिली, नाम काजोल। अगर आप स्टार सन्स स्टार डॉटर्स की बात करें तो लोग बाहर के लोग यानी कि जो फिल्म फैटर्निटी की नहीं है वो लोग कहते हैं अरे एक्टर एक्ट्रेस माता पिता हों तो बन जाते हैं एक्टर। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कितने आए और कितने गए, अच्छे अच्छे एक्ट्रेस बड़े बड़े सुपरस्टार जो रहे हैं उनके बच्चे भी नहीं टिक पाए। तो जब तक आप में वो गुण नहीं होंगे ना वो आप फिल्म इंडस्ट्री में रह नहीं पाएंगे। आप देख लो ना काजोल सुपरहिट, उनकी बहन भी थी, वो तो नहीं वो मकाम हासिल कर पाई ना। काजोल एक्सप्रेशन वो बहुत मायने रखते हैं, जो जो आपके चेहरे का जो भाव भंगिमा जो है ना और फिर बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत मैटर करती है। डायलॉग डिलीवरी बोलने का अंदाज वो सेंस बहुत ही मुश्किल से आती है। खैर इन बातों को छोड़ देते हैं और सीधे पहुंचते हैं फिर से हम DDLJ पे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वहां पे एक सॉन्ग था रुक जा ओ दिल दीवाने, उस गाने में एक सीक्वेंस है, एक डांस सीक्वेंस है जिसमें शाहरुख खान ने काजोल को कैरी किया हुआ, मतलब उठाया हुआ है गोद में और बातों बातों में गाते गाते अचानक से वो छोड़ देते हैं जमीन पे, वो धड़ाम से गिर जाती है। वो चेहरे का एक्सप्रेशन OMG लाजवाब सुपर। लेकिन पता है इसके पीछे ही कहानी, काजोल को पता तक नहीं था कि ऐसा होने वाला है, बताया नहीं गया था उनको। वजह पता क्या कि नेचुरल एक्सप्रेशन है, ऐसे तो फिल्में बनती हैं, कहां कहते हो अब क्या आसान है। बिल्कुल वो शेर यहां पे सटीक बैठता है कि ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए का कदरिया है और डूब के जाना है। ऐसे होती है फिल्में, मतलब फिल्म मेकिंग होती है। तो फिलहाल हम बैक टू बैक काजोल के दो गाने चलाते हैं, एक तो यही जिसमें उनको धड़ाम से नीचे शाहरुख खान ने छोड़ दिया था, दूसरा उनकी फिल्म का एक, वहां भी शाहरुख खान है लेकिन गाना अलग। एंजॉय कीजिए इसे कहीं और नहीं, आकाशवाणी कोलकाता के FM रेनबो 107 पे बातें दिल से दिल तक की हो रही है। तो गाना वही रुक जाओ दिल दीवाने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

जल्दी नहीं है लेकिन मुझे छोड़ के कहाँ, मैं भी साथ चल रहा हूँ ना। आकाशवाणी कोलकाता के एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं और मुझे सुन रहे थे देंगे। मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल और समय हो गए हैं 8:52 हो गए हैं। अब हमारे जाने की भी बारी आ गई है, वो गई तो पीछे पीछे मैं भी चला है नहीं। चलो आना जाना तो लगा ही रहेगा, जिंदगी का यही सिलसिला है। और मकसद बस इतना ही है कि जितना साथ मिले ना बड़ा ही खूबसूरत होना चाहिए। खूबसूरत इन द सेंस कि रिलेशनशिप ऐसी बनी रहे कि जो पास बैठे ना तो सुकून सा महसूस हो, सुने एक दूसरे को। जिंदगी में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमेशा कहना जरूरी नहीं है, सुनना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। तो आप सुनने की भी आदत डालें, सिर्फ सुनाने की नहीं। जैसे वन वे हमारा हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब लेकिन म्यूजिक, इसलिए मैं म्यूजिक पे फोकस ज्यादा करता हूँ क्योंकि आप कम से कम एंटरटेन करें। और हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मेरी आवाज़ सुन के दिल पे थोड़ा सा कुछ कुछ होता हो, तो अच्छी बात है। कानों में मिठास खोल रही हो मेरी आवाज़ तो बहुत बेहतर है। और हमारी कोशिश ये होती है कि आप जिंदगी में खुश रहें, इसलिए जागरूक करते रहते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में सभी को सुनना जरूरी है, अपने से छोटे को भी बड़े को भी। ना सुने तो वो किसी और से कहेंगे, फिर बातें बिगड़ती चली जाती हैं। तो दूसरे सही बताएं या गलत उनको लगेगा अच्छा, क्योंकि अपने तो सुन ही नहीं रहे हैं कि नहीं। तो चलिए इसी नोट पे मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। और जाने के एक और सॉन्ग जो हमने कहा था ना प्ले करेंगे, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है ये, समझ लीजिए कि एक मेलोडियस सॉन्ग आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगली मुलाकात कब होगी ये तो हमें भी नहीं पता है। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।

तुम्हें नाम दिया है मैंने एक, तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर, भोला चेहरा, हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

जिसकी तस्वीर निगाहों ने तस्वीर में देखे रंग गई, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।